0: चौजक धरली रशी मापरी मऊ असले ताचे काड उजो पेटोन एक सकिन्यानी उलपाले लांब काडाचे मुर्ग जाऊन असतात कई आपलो दुबाव एकदम दसूक लागलो. धन्यवाद, देव बरे करूंक.
1: मुझे नाव सियाना इवा पिरेरा आव एल के जी क्लासिन शिकता आव सदार कर चिकाने जाऊन आसा अंकारी मान को एक तन्याच्या वेगीर एक वोर मान को आणि ताची पिला गप्पे मानले तांतले एक लान पे बियान कमतले कितें जाले पुता कित्याक तू कमताय त्याच्या बापान विचारले आना कितें सांगचे आज हांवे खूब ड्रकूस पळयलो तो पर्वत तितलो वाड सरलो ताचे टिकले दोन शिंगा फाटल्यान एक लांब शिंगटी ते विवरण चूक गेल्ले ते पळयलो हे आयकोन तसो बापाय किसी किसी करना असान सांगले तू म्हजो पूत जावन इतलो पेद्दू जावंक नजो तर आपूस नाही पुता तो पेद्रा मासो रेडो जावंक हांवें तितलो भयानाक ना म्हणजे ते चिक्क्यो भरून सुंका तितलोच हांवें मन केला ताचे घेव बाजावेत त्या बापाचे उतार आयकोन मानक्याक इल्ले मने समाधान जावना तर रेडा तितलो वोट जावन तुका साधे ना ताच्या बापायक अवमान बघलो त्याने एक दक्षिण एक वोड एकदम मुखान गेलो तो चिक्क्या उभा दिसतो आता खरे अंगेरे रेबर दिसता की ना बिलकुल दिसना पण ही वोड आणि उबार असा म्हणून सांगताना अनेक कोटी मानक्याना एक जोरान श्वास कन गेलो என் பாபானா பிராணிக்கு ஓடானு உபால் கழிஞ்சம் சங்கானா மண் கப்பினான் வரை கழுத்தானா மண் கொதம் முக்கேத்து எக் பலோன பரி புகத்து கெல்லோ ஆ தம்பர அவசம் பிராச ஓடி முந்தாத் என் சங்கானா எக் தப்பல்ல கண் ஓட வாசாயிலோ एक आटम बॉम्ब फुटला बरे तेंस ते मानकेचे पोट फुगोन फुगोन फुटोन मन कवय रुसन डबल कन धरणी कापडालो अशे ओडपण करून कोसून आपलो जीव सगडेलो

मैं तुम जो इश्क ने के जो अंडरला ये जेम तो आई लो तजा पट्टी बोसन आई रखवा मुर्दे ने प्रोटा संग ने मुझे भाई ले जो रुशर ना जा भाई ले जो रुशर ना डॉक्टर इन संग ला मांग तजे कालीस का जेम मांग दरबार बेलगली अनि संग ने कारण आटा उड़ा सकते ले वो दूर उड़ा सकना साले आमे खाली इस रम ना चावु काला उन कलो नहीं लाम दर्द लसे से भी कहाँ मान डोगो सुबत ना तन्ने दर्द लसे सुने या पटिया कार्य सन्ने व्यां मेरे दर्द लसे से पटी गेरो अने तका देवे ने तो विगी विगी माकोड वही से लो अने संगले तुम जो बड़ो इष्ट आमें तो कावम न पूरा दे लो अने मुकाब तुम जो मुकाब इष्ट एक न का अने उन कजाम ला दीना मावल के दाला अने का स्मार्ट असर्जे अने आलोजन कर्जे अने अमेकारे में बेस्ट न बियानो सो

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: ha tant dar na tachi tu di jimne chau jak darli rashi ma pari mau asle tache kaad uzo petonu ek sakinyani ulpale lam kadache mur sound astat kai aplo dubao ekdam dasung laglo dhanyawad dev bare karun
1: मुझे नाम सियाना इवा पिरेरा अब एल के जी क्लास इन शिकता अब सदार कर चिकाने जाऊना सा अंकारी मान को एक तरले अचरे गेर एक वोर मान को अनिता चिपीला गप्पे मानले तांतले एक लान पे बियान कम तले कितन जले पुता कित्याक तू कम ताए त्याच्या बाप्पाने विचारलंय अना किते सांगचे आदवे कुड्रम घुसपरेल तो पर्वत तिथलं वाढ सरलो त्याचे टिकले दोन शिंगा पटला नकलाम शिंगटे त्या विवरण चुप गेले ते पेल याय कोण तस बाय किसी किसी कोण असं सांगे तू मग पूत जाऊन इतकं पेद जाऊ नज तर आपूस नाही पुता तो पेद्रमा सोरेड बापाईको अनेक मान एक जोरान श्वास कन गेलो என் பாபா நானைக்கு ஓடானு உபாத்தாயம் சங்கானா மண் கப்பினான் வரை கல்தானா மண் கொதம்மு கண்கெட்டு எக் பலோன பரி புகத்து கெல்லோ ஆ தம்பர அவசாய்பம் பிராச ஓடி முந்தாத் என்ன சங்கானா எக் தப்பல்ல கண் ஓட வாசாயிலோ एक आटम बॉम्ब डबरे टेंस ते मन के चपोट फुगन फुगन फुटन मन को वही रुस्तन डबल लगन दरने काप डालो ऐसे उड़पन करूं कौन सुनो अपना जीवन सब डेलो

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।